0: डॉट तुम सुन नहीं रहे हो यार।
1: ट्रेन का भी लॉज का भी आगे जरा बिल तो दे जाना। ट्रेन का भी लॉज का भी आगे जरा बिल तो दे जाना।
2: कैंच में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना। देख

तितलियां रहमतों की रक्षा हैं, जज्बो मस्ती के फूल खिलते हैं। फैज आलम की गुलफिशां चौखट रूह को लाला फाम करती है। अजमत दो जहां।

खुद से भी मिला करें, सर उठा के चला करें। खुदा के तरीके हम नहीं समझ सकते, हम उससे क्या गिला करें। दुनिया संग दिल बनती मेरी, दुश्मन हम कम से कम खुद से ही सुला करें। कम बोला करें, ज्यादा सुना करें, रब देता है माफी फिर गुनाह करें। ये ताकत ठिकाने बदल सकती, कलम की ताकत तख्त भी पलट देती। लिखारी जान लेवा हूँ पर लिखाई ही रोज अब जीने का सबक देती, वरना जिंदगी मौके तो कम देती। महफिलों में तो रौनक भी हमसे थी, इधर हसल करते करते पूरा दिन गया। उर्दू रैप मैं, उर्दू रैप मेरे बिन क्या। फैक्स है ये फ्लेक्स नहीं, मुझे गालिब जैसा लिखने का फैज नहीं। वो हबीब है मेरे तो मुझसे दूर क्यों, वो हरीफ है मेरे तो उनकी खैर नहीं। आजकल भेजे मुझे टेक्स्ट अप, व्हाट्सएप पे दे वन नोगे व्हाट्सएप। मेरी जिंदगी कितनों की हसरत, मैं मिसाल मेरा नाम लेते मसलन। दिल फेंक के ना दिल तोड़, बिलबोर्ड पे अब दिखे शक्ल इनको। मेरा बैंक बैलेंस लगता था पिन कोड, अब सफर देख सिर्फ सिफर गिनतू। आई बिलोंग हियर, जाने का मूड नहीं है। हेडलाइनिज्म तेरी कोई न्यूज नहीं है, क्या वो सुनते पर करते महसूस नहीं है। वादे टूटे पर टूटे हैं, असूल नहीं है।

जा सुल गए, कटे मेरे पर फिर भी जाने कैसे उड़ते, मुझे उड़ने दे, टूटे जो दिल वो आज जुड़ने दे, इन आंखों को खुशियों से भरने दे, अल्फाज मेरे दिल में उतरने दे, मंजिल तो खुश हो ठहरने पे, ये घर मेरा जड़ को ना मरने दे, उभरेंगे सूरज ये ढलने दे, वक्त लगे खुद को बदलने में।

0: ये जुल्फें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, ये जुल्फें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, किसी की धड़कने यूं ही बढ़ा रखी हैं। सुर्ख रुखसार पे वो तिल तौबा, कितनों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मैकदों में वीरानी सी छा गई है, मैकदों में वीरानी सी छा गई है, यो आपने महफिल की रौनक सजा रखी है। नजरों के प्यालों से छलकते जाम ये, नजरों के प्यालों से छलकते जाम ये, हर सू मैं कशों की बाढ़ लगा रखी है। हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम, हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम, मुसव्वरी की आपने हर हद ढा रखी है। सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें, सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें, क्या मुझे मदहोश रखने की कसम खा रखी है। शुक्रिया।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: 99.8 Awaaz FM.

0: कितना अच्छा है कि माँ हमारे लिए हर पल मौजूद है। शुक्रिया अदा करें मॉम का।
1: थैंक यू मॉम।
2: Remembering how to prepare for a road trip is as easy as spelling it. T is for top up, like fuel, oil, and screen wash. R is for rest, taking a break every 2 hours. I is for inspect, like your tire pressure and tread. P is for prepare, being prepared for any weather. T R I P. Remember that, and you're ready for a safe trip.
3: Are we ready?
2: Yes, Mom.
4: National Highways.
5: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए। आप अपने आवाज़ एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुँचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ।
6: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
7: Southampton's community radio, Awaz FM.
8: Hello, I can listen the song for Madison, please. My name is Ashfaq. Is Jeevan Bhar Saath Nibhayenge Hum Dono. Please, agar ho sake to meherbani, shukriya.

कई अरब सितारों में एक अकेली जमीन, वहां कई अरब लोगों में वो तन्हा लोग जो अक्सर याद आते हैं, तो क्यों ना याद करें।

है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है।

0: है करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: सही श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: From Merrioak to Mayfield, from Bitton to Bassett, this is Ours FM.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर.
0: This is Ours FM.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए.

0: के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Ours FM.

बाहुबली वार किया, जीना दुश्वार किया, तेरे मेरे रास्ते में खड़ी दीवार किया, है ना, है ना। प्रेम के थाने में मैंने दिल का एफआईआर किया, तूने मुझे प्यार किया, मैंने तुझे प्यार किया, है ना, है ना।

0: This is Natalie DeLuccio and Sunte Rahi Hai Awaaz FM.
1: Diwani, Diwani, Diwana Tera Ho Gaya. Lata Mangeshkar and S.P. Balasubramaniam were singing from the film First Love Letter. You are listening to my magazine show Kinare Kinare. I am Rahi Baines and this is Awaaz FM. Kinare Kinare comes to you here on Awaaz FM every Tuesday from 11 o'clock in the morning until 1 o'clock in the afternoon. Now it's time for some chutkale, some funny anecdotes with Kapil Sharma. And today, he's talking about when husband and wife quarrel. What happens? Let's see.
2: आप सबका स्वागत है एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद कपिल।
3: ये क्या हो रहा है? मैंने आपको कहा था बकरी को स्वेटर पहनाइए और आप यहाँ पे आके मेरे शो पे कब्जा कर रही हैं?
2: मेरा तेरा क्या है, हम हस्बैंड वाइफ है, सब कुछ आधा आधा होता है, मतलब हमारा है
3: ठीक है, तो तुझे बंटवारा करना ना तो तरीके से करते, ठीक है? ये घर मेरा, दादी तेरी, ये शो मेरा, बुआ तेरी, बोल।
2: ये कैसे बंटवारा हुआ? सारी अच्छी चीजें खुद ले लिया, बुरी चीजें मुझे दे दी।
3: अच्छी चीज चाहिए आपको, एक काम करते हैं, सिद्धू बाजी तुम्हारे, सिद्धू बाजी के पीछे वाली पूरी लाइन मेरी।
2: खबरदार, अगर आपने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखना तो मैं चुप नहीं बैठने वाली।
3: क्या करेंगी आप?
2: मैं पापा से कहकर आपको ठीक करवा दूंगी।
3: जो चीज आपके पापा ठीक करते ना उसको गैस का चूल्हा कहते हैं, मेरा कहीं से बर्नर नहीं लीक हो रहा, समझ में आया ना? भैया अपने बाप को ठीक कर जाके पहले। इसके बाप की आपको बात बताऊं बाजी, जिस दिन मेरी शादी थी बराती वहां पे अपने अपने ड्रिंक मार रहे जो हमारे घर की तरफ से गए, उनको जाके बोलता भाई साहब एक एक हमें भी तो लगवाइए, हमें तो उतनी खुशी है और मुझे तो उल्टा ज्यादा खुशी, हमारी बेटी जा रही है अब उसके हिस्से की सब्जी भी हम खाएंगे।
2: शादी का माहौल था, कुछ एक पैक ज्यादा पी ली होगी इसीलिए कुछ कह दिया होगा, लेकिन मेरे पापा पाजी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते, आप भूल गए विदाई के वक्त कितना रो रहे थे वो मेरे लिए।
3: तेरे लिए नहीं रो रहे थे, घोड़ी के पैर के नीचे हाथ आ गया था पैसे लुटते लुटते, इसलिए रो रहा था बुड्ढा। बढ़िया ही। और बरात जब इनके घर में पहुंची, बरात वाले बेचारे खाना ढूंढे, कहे भाई साहब खाना, कहते आप दुल्हन लेने आए कि लंच करने आए, हद होती बेशर्मी की कोई।
2: भूल गए तुम अपनी दादी को पाजी, इसकी दादी जिंदगी में पहली बार पनीर देख के इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि वो सीधे पनीर के पतीले में कूद गई।
3: तो पनीर था, ये था उसमें, कोई पनीर नहीं देखा मैंने। पनीर ढूंढने के लिए तो बेचारी ने पतीले में छलांग लगाई, और इतने कमीने लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे। आप यकीन नहीं करेंगे भाई, चार टुकड़े थे पनीर के, तरी में नाक बंद करके उसका मामा बैठा हुआ था, कहता घर का कोई मेन मेंबर आया तो हाथ से पकड़ा दूंगा, बेइज्जती कम होगी। अबे लानत है तुम्हारी फैमिली पे।
2: चुप रहो तुम, जब देखो मेरे रिश्तेदारों की बेइज्जती करते रहते हो। और पाजी ये खुद इतना ज्यादा बेशरम है, विदाई के अगले दिन जब मेरे मम्मी पापा ने इनवाइट किया, ये सूट के बदले साड़ी पहन के आ गया।
3: तो जो तुम्हारे पिताश्री देंगे वही पहन के जाऊंगा मैं। पाजी इनको सस्ती साड़ियां मिली, सबको साड़ियां गिफ्ट कर दी, अबे दामाद को तो कम से कम सूट लेके दे दो, मेरे को भी साड़ी, मैं भी चला गया पेटीकोट पहन के, मेरे को क्या, ऊपर से इसके बाप की हरकत देखेंगे आपको भी शर्म आएगी। पाजी यहां तक पेटीकोट बांध के था, हाउस में गॉन लुकी, अबे लानत मर जाओ यार।
2: अब जब देखो मेरे पिताजी की बेइज्जती करते रहते, अगर मेरे भाई ने सुन लिया ना तो आपकी खैर नहीं।
3: कौन तेरा भाई? वो चार फुटे तेरा भाई, वो शुतुरमुर्ग का अंडा। मैं आपको बताऊं भाई, इसका भाई ये तेरी साइड में नहीं है तेरा भाई, मैं तेरे को सच बताऊं, मेरी शादी जब हुई ना हमारी, मेरी शादी से पहले मेरे को बोल रहा था, कहता भाई साहब अगर आपको 1,00,000 रुपए का दहेज दिलवा दें तो 10% मिलेगा मुझे, ये तो तेरे भाई की करतूत है।
2: मैं उस भाई की बात नहीं कर रही।
3: कौन? तो वो दूसरा वाला जो सिगरेट पीते पीते सो गया था, आधी मूछ जल गई थी। भाई की बात बता रहा हूँ, इतना कमीना पाजी, बैंड वालों को जाके पता क्या बोलता है? कहता जो इनाम हुआ आधा मेरे को दो, आपकी तो फूंक जा रही, मेरी तो बहन जा रही, बोलता है। जा, किस भाई की बात कर रही हूँ?
2: मैं उस भाई के बारे में बात नहीं कर रही।
3: तो कौन वो तुम्हारे चाचा का लड़का जिसको कुत्ते ने नाक पे काट लिया था? वो तो एक नंबर का डफर पाजी, कुत्ते ने काट लिया, धरना देने बैठ गया वहां पे, कहता जब तक कुत्ता रिटर्न में माफी नहीं मांगेगा मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा।
4: Barra Drums, from Kingston to the Nile. Join me, Tap, for a show where you can listen to the vibes of Africa, blended with music of the Caribbean, combined with news, views, and opinions, bringing Africa and the Caribbean culture alive every Sunday at 1 p.m. only on Awaz 99.8 FM. See you then.

0: This is your host from Norfolk, Alex Aller, on a Waz Drive Time. Listen to me at 4 to 6 on Fridays, 99.8 FM. Turn it up and lock it in. Happy Friday on a Waz, 99.8 FM. Call me on our landline, 02381 9800 72. Finish your Friday with me, Alex.
1: ओ सैया मेरी अधूरी कहानी लो दास्तां बन गई. रूप कुमार राठौर वाज सिंगिंग फ्रॉम द फिल्म अग्निपथ. लेट्स लिसन टू वन मोर सॉन्ग एंड देन वी विल हैव द बर्थडे बैश. हियर इज अ ड्यूएट सॉन्ग बाय लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार टेकन फ्रॉम द फिल्म गाइड व्हिच वाज रिलीज्ड इन 1965. गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल. The music is composed by Sachinder Barman and Shailendra wrote the lyrics for it. This song was picturized on Devanand and Wahida Rehman. Enjoy this all-time great romantic song.

0: I'm John Denham. You're listening to Hours FM.
1: Southampton's community radio, Hours FM.
2: हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा. कुमार सानू एंड आशा भोंसले वर सिंगिंग फ्रॉम द फिल्म जान तेरे नाम. दिस इज आवाज एफएम एंड यू आर लिसनिंग टू माय मैगजीन शो किनारे किनारे. आई एम रोही बेंस. नाउ इट्स टाइम फॉर ए बॉलीवुड बायोग्राफी एंड टुडे आई हैव सिलेक्टेड द बायोग्राफी ऑफ डैनी डेंजोंगपा फॉर यू टू एंजॉय.
3: यूं तो इनका नाम रखा गया सेरिंग फिनसो डेंजोंगपा, पर हम इन्हें डैनी डेंजोंगपा के नाम से जानते हैं. जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री का बख्तावर ओरिजिनल कांचा चीना डैनी.
4: जो कपड़ों पर रंग चढ़ा दे उसे रंग रेजा कहते हैं, और जिंदगी पे जो मौत का रंग चढ़ा दे उसे चंगेजा कहते हैं.
3: डैनी डेंजोंगपा का जन्म 25 फरवरी सन 1948 में हुआ. क्योंकि ये भारत के सिक्किम इलाके से ताल्लुक रखते हैं, तो वहीं पर इन्होंने अपनी पढ़ाई भी की.
5: ये सच है जज साहब.
3: वो और बात है कि जब डैनी डेंजोंगपा ने इच्छा जाहिर की कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे, तब इनकी माता जी को जरा चिंता हुई. तब इनकी माता ने ये सुझाया कि बेटा, आर्मी की जगह तुम क्यों नहीं किसी कला क्षेत्र में चले जाते. लिहाजा डैनी डेंजोंगपा ने FTII का रुख किया. इन्हें एडमिशन तो मिल गया, लेकिन इनके शुरुआती दिन बहुत ही खराब रहे. अक्सर इनका मजाक उड़ाया जाता, कोई इनके चेहरे का मजाक उड़ाता तो कोई इनकी बोली का, और इनके नाम को लेकर तो सभी हंसते. और तब इनकी बड़ी गहरी दोस्त जया बहादुरी ने इनकी मदद की और कहा, तुम अपना नाम डैनी क्यों नहीं रख लेते, क्योंकि हर कोई सेरिंग फिनसो डेंजोंगपा तो नहीं बुला सकता. इसीलिए डैनी डेंजोंगपा जुबान पर चढ़ने वाला नाम है, और यूं इनका नाम डैनी पड़ा.
4: जब 100 बच्चे माँ के पेट में मरते हैं तो चंगेजा का एक दुश्मन पैदा होता है. इसलिए इसके अर्थ ही धूमधाम से निकलने चाहिए. मगर याद रहे, चिता इतनी दूर जलाई जाए कि उसका धुआं भी चंगेजा के इलाके को ना छू सके.
3: अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन्होंने FTII में ही बतौर योगा टीचर भी काम किया, और अपने बहुत सारे जूनियर्स को योग सिखाया. इनकी मेहनत रंग लाई, और गुजरे वक्त के मशहूर मारूफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर BR इशारा ने इन्हें ब्रेक दिया फिल्म जरूरत में.
6: अपने जेलर से कहना ये तोहफा हमें पसंद आया, ऐसे मर्दाना जेवर हमें अच्छे लगते हैं.
3: अभी एक्टिंग की गाड़ी शुरू ही हुई थी कि सामने बहुत सारी कठिनाइयां आईं, और तब एक बार फिर इनकी सहेली जया बहादुरी ने इनकी मदद की. ये वो वक्त था जब गुलजार साहब फिल्म मेरे अपने का निर्माण कर रहे थे. जया जी ने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि डैनी को भी इस फिल्म में मौका मिले, इस तरह से फिल्म मेरे अपने का ये हिस्सा बने. उसके बाद BR चोपड़ा साहब की फिल्म धुंध ने सब कुछ बदल के रख दिया.
4: अच्छा, तो तू है वो शहरी मास्टर जिसने बिजली को लड़ना सिखाया है, एक एक लड़की को लड़ना सिखाया है.
3: यह बात तो सभी जानते हैं कि डैनी एक प्रशिक्षित अभिनेता हैं, पर ये बड़े जबरदस्त गायक भी रहे, ये बात जरा कम सुनने में आती है. फिल्म काला सोना में इन्होंने आशा भोसले जी के साथ एक दो गान गाया था, जो इन्हीं के ऊपर पिक्चराइज भी किया गया.

0: डैनी डेंजोंगपा की विलनी देखकर रमेश सिप्पी ने अपनी फिल्म शोले में इन्हें गब्बर का किरदार ऑफर किया था, पर कुछ डेट्स प्रॉब्लम की वजह से डैनी ये किरदार नहीं निभा पाए और अमजद खान बन गए अमर गब्बर। डैनी डेंजोंगपा दरअसल हर तरह का किरदार निभा सकते हैं, कॉमेडी हो कि सपोर्टिंग रोल, विलनी हो कि डबल रोल।
1: मुझे मालूम है चंगेजा कफन देखकर मुर्दे का पता लगा लेता है। मास्टर, जब पानी को गर्म करो तो गर्म होके उबल तो पड़ता है, मगर उसमें इतनी सी भी आग नहीं निकलती कि एक बीड़ी भी जलाई जा सके। मगर मैं देख रहा हूं तुझमें बहुत आग है और चंगेजा को आग बुझाने में बड़ा मजा आता है।
0: डैनी डेंजोंगपा की निजी जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनकी शादी हुई गाबा डेंजोंगपा से। शादी से इन्हें एक बेटा और बेटी हुए। इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा। इन्हें कई बार अलग अलग अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया और अवार्ड्स दिए भी गए। बड़े से बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो सामने, डैनी का अभिनय उन्हें कड़ी टक्कर देता है।
2: बहुत दिनों से ढूंढ रहा था तुझे।
3: अच्छा, तो वो तुम थे।
0: डैनी डेंजोंगपा उन गिने चुने अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने अपने शरीर का बहुत ख्याल रखा और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में डैनी डेंजोंगपा ने जो मकाम हासिल किया है उसे पाना नामुमकिन है।
2: घटिया बाप की घटिया औलाद, लड़की खुद उठाकर ले जाते हो और नाम लेते हो शिवा का।
4: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
5: You just heard the Bollywood biography of Danny Denzongpa. You are listening to my magazine show, Kinare Kinare. I am Rahi Baines, and this is Awaz FM. In about 10 minutes' time, we'll have our friendly quiz called Name the Film, Film Ka Naam Kya Hai. In this quiz, I play to you the title music of a film, and all you have to do is identify the film. But before that, Salaam Main Toh Sahab Ban Gaya. Here is a duet sung by Kishore Kumar and Pankaj Mitra. The music is composed by Sachin Dev Barman and Majru Sultanpuri wrote the words for it. This song is taken from the film Sagina, which was released in 1974. And on the big screen, we saw Dilip Kumar and Om Prakash doing the lip sync. Enjoy it.

फकीरे ना फकीरे सूट पहनकर कैसा टूटे फांदे माँ फकीरे सूट पहनकर कैसा टूटे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया इस सालों में तो साहब बन गया साला मैं तो साहब बन गया साहब बन के कैसा तन गया ये सूट मेरा देखो ये फूट मेरा देखो।

0: अलबेली, कैसा राजा भोज बना है मेरा गंगूतेली।
1: क्या गंगूतेली?
0: तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हमसा ना बदलेगा, हमसा ना बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गया साला में तो सा...

0: you should be able to trust the ads you hear, whether you love them or hate them. So we're keeping our ears open because every little helps. The ASA, keeping ads legal, decent, honest, and truthful. Oh, yes.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू
2: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM. 24 hours a day, Hours FM, online and on air. On 99.8 FM and online around the world, this is Southampton's Hours FM News.

0: दीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा भी प्रोग्राम सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो फिर हजूर देखिए ना, आप आ गए तो हम भी आ गए, कोई फीडबैक कीजिए ना, पता चले आप कहाँ हैं और किस शहर में हैं, किस मुल्क में हैं वगैरह वगैरह जी, पता चले ना अपन साई को। हमें तो भाई टेलीफोन खड़कते हैं तो फिर हो जाता है दिल गार्डन गार्डन पर, टेलीफोन क्या खड़केगा जो काम ही नहीं कर रहा। अलबत्त आप टेक्स्ट कर सकते हैं 07784691440 पर, हाँ जी, इस पर कॉल ना कीजिएगा। आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके इसे भेज दें, ये फ़िलहाल काम करता है जी। तो फिर ये कहना पड़ेगा मुझे जी, हजूर देखिए, हजूर देखिए, ज़रूर देखिए, शबाब है नशे में चूर चूर देखिए। नसीम बेगम की आवाज़ में आज का पहला गाना है जी, फिर मैं गुलफाम।
1: हुजूर देखिए, ज़रूर देखिए, शबाब

जी कबीर सिंह बैठी रोए जी, आपकी ये पसंद थी जी, मैंने बगैर नाम लिए आपका गाना बजा दिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अगला गाना सुनाते हैं जी, फिल्म का नाम है जी सरफरोश मनवर सुल्ताना गा रही हैं, कहती हैं जी एक चोर एक लुटेरा बस कर मेरी नज़र में दिल ले गया मेरा, ले गया है मेरा, ऐसी बात है।

एक दिल और गाहक इतने जी, क्या आवाज़ है। ज़ुबैदा खानम की आवाज़ में आप सुन रहे थे, फिल्म थी नींद। राजराम जी, आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट जारी और सारी है, जाने क्या हो गया जी, टेलीफोन कुछ सारे ही बंद होने शुरू हो गए। एनीवे मैं देखता हूँ इस गाने के बाद क्या होता है जी। अगला गाना आपको सुनवाते हैं जी, फिल्म का नाम है जी बहन भाई। ग़ुलाम अब्बास और मेहती हसन ये दोनों गा रहे हैं जी। इस दुनिया में यार हम तो रहे क्या अनाड़ी, ऐसी बात है।

0: रहे अनारी।
1: लो जी, इस दुनिया में यारो हम तो रहे अनाड़ी जी। मेहदी हसन और गुलाम अब्बास सुन रहे थे जी फिल्म बहन भाई में। और खुशकिस्मती हमारी ये है जी कि टेलीफोन हमारा लग ही गया जी आखिर। राज राम जी नमस्कार।
2: ओ नमस्कार भैया, नमस्कार भैया। ये नाराजगी कहाँ, कभी कब तक हम चलावे अभी? अभी ये तो बहुत नाराजगी हो गई हमारे से।
1: अब तो भाई लगता है कहीं ना कहीं से को तीर कुमार मारेगा को तीर।
2: ऐसा लगता है कि अब ऐसा ही करें कि भाई इसको ये रेडियो स्टेशन भी छोड़ देवे, अगले साल तक चालू करेगा, देखेगा क्या होएगा, क्या करें।
1: एनीवे जी, कोशिश जारी और सारी है, अलबत्ता देखिए क्या होता है, देर है दुरुस्त हो जाइए।
2: कोशिश तो बस मैं महीना दो महीना ऊपर हो गया, महीने के ऊपर मेरा ऐसी कोशिश चल रही है, कुछ होता नहीं है। वर्किंग ऑन इट बस।
1: एग्जैक्टली जी, ये तो हमारा फिक्रा जो है ना वो तो खास है ना, ये तो बात है। एनीवे आपको हैरानगी की बात है कि दूसरा टेलीफोन भी आज आपका नहीं लग रहा ना। मैं
2: चलो
1: एनीवे आप आ गए हैं जी, देर आए दुरुस्त आए, फरमाइए आज क्या गुनगुनाए हमारे लिए।
2: गुनगुनाने में तो क्या है, हम तो आज मुकेश के दीवाने हैं और आधा आधा क्या पौना पूरा मुकेश हो गया अभी। इंतजार करके कर करके हो गए मुकेश हम तो।
1: अरे मुकेश तो आप हैं ही, इसमें कोई शक नहीं, बस इत्तेफाक से घबराइएगा
2: नहीं। बोले तो गाना गुनगुना दे, बस आप बजा देना मेरे लिए, कोई बात नहीं सबके लिए।
1: जी बिल्कुल हाजिर है, बिस्मिल्लाह कीजिए, मैदान हाजिर।
2: ये आवाज उसमें आता नहीं है रेडियो में।
1: रेडियो में आवाज आप नहीं आ रही क्या? थोड़ी सी डिले होगी, आएगी।
2: अच्छा
1: डिले है ना, डिले है, आएगी। आप दो चीजें,
2: आप गाना मुस्कुरा
1: दो, दो चीजें काम नहीं कर सकते, सुने भी और वहाँ वो भी नहीं। नहीं बात करें, सुनना बाद में प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच।
2: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो इस पे चलेगा। उस पे तो बात है, आवाज आता तो वही टाइप पर आवाज आता है, मैं वो दूसरे फोन में से।
1: अच्छा,
2: अब ये व्हाट्सएप में ऐसा हो गया मेरा। कोई बात नहीं, चलो मैं गाना गुनगुनाता हूं।
1: क्या पता आप कौन से मुल्क से घूम के आ रहे हैं, आवाज आपकी पूरी दुनिया से घूम के आ रही है भाई।
2: कुरेशी साहब आप आओ और ये स्टूडियो वाले को दो तीन धक्के मारो, उसकी धुलाई करनी पड़ेगी, ये लोग सीधे नहीं चलने वाले।
1: ऐसी बात है क्या? कोई बात नहीं, नहीं नहीं, अकलमंदों को इशारा ही काफी है, कोई धक्कों की जरूरत नहीं हमें। अच्छा, जी बहुत शुक्रिया जी।
2: अभी वो धोखा लेके आता है, बस देखो क्या करता है वो तुम्हारे।
1: आज उसका फोन तो लग जाए पहले।
2: फोन कभी का लगाता है, वो लगता भी नहीं है तुम्हारा फोन उससे, इसलिए चलो मैं अभी थोड़ा गाना गुनगुना था, मेरा ये फरमाइश चल रही।
1: जी जी।
2: मुझको इस रात की

0: दो जिसकी आवाज रुला दे वो मुझे रुलाते मुझे रुलाओ साजना ओ साजना दो। आज तो मेरा भी कुछ इसमें गड़बड़ घोटाला हो गया।
1: कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
0: गाना बस गुनगुना दिया सबके लिए बस।
1: बहुत शुक्रिया
0: मेहरबानी करके आप गाना बजा दो बस।
1: अभी बजा देते अभी बजा दे जी अभी बजा दे अभी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आई ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू समीन। ये थे हमारे भाई राजराम जी। लंदन से आते हैं फिर मज़ा ही आ जाता है जी। गुनगुनाते हैं तो फिर चार चांद तो लग ही जाते हैं इसमें कोई शक नहीं। आज इनका कोई भी टेलीफोन सीधा नहीं लग रहा। देखते हैं कुरैशी साहब कहाँ कर रहे हैं कुश्ती। पर एनीवे आपका गाना आ रहा है जी मुझे इस रात की तन्हाई में आवाज़ ना दो। मुकेश की आवाज़ है जी। फिल्म दिल भी तेरा और हम भी तेरे।

तंग आमन बजंग आमन। कभी कभी ऐसा होता है कि जी खुदा से भी लोग शिकवा करते हैं कि तूने ये जहां बना के एहसान क्या किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, उसने बहुत कुछ बनाया। और अपनी अपनी शायरी है, अपनी अपनी बात है जी, हम आर्ग्यू नहीं कर सकते जी इतनी बड़ी हस्ती के साथ। जिसने सब कुछ बनाया उसने सोच समझ कर बनाया जी। यानी ये गाना था आपकी पसंद थी जी, सुनाया आपको मैंने। अगला गाना आपको सुनवाते हैं जी, फिल्म का है जी जन्म जन्म के फेरे। लता मिश्र गा रही हैं जी, साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफ़ी। कहते हैं जी ज़रा सामने तो आओ चलिए।

चाहूंगा आपका बाल बच्चा, खा के देखो वेरी वेरी गुड मेरा चार्ली बादाम पिस्ता। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल।

मेरा नाम अब्दुल रहमान जी, आपने खाए पिस्ते बादाम? कुछ ऐसी बात है जी, फिल्म भाई भाई से सुना आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना। अगला गाना आपको सुनवाता हूँ जी, फिल्म है चंद्रकांता जी, चंद्रकांता फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं जी। मैं चाँद और सितारों की तमन्ना की है, मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की है।

मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी जी। आप सुन रहे हैं रेडियो बाज़ हम साउथ अपडेट। अगला गाना आपको सुनाता हूँ मैं, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ है जी, दोनों मिलकर गा रही हैं। उषा मंगेशकर भी इनका साथ दे रही हैं जनाब। गृहस्थी का गाना है जी ये फिल्म, और कहती हैं जी, खिले हैं सखी आज फुलवा के, फुलवा मन के,

खिले हैं सखी आज फुलवा बन के, जाऊंगी ससुराल दुल्हन बन के। लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आशा भोसले ये तीनों गा रही थी, फिल्म थी गृहस्थी के। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 100.9। ज़मीन कुछ फ़ोन की उल्ट पुलट हो रही है अब तो, भी मेरा ज़ाती फ़ोन जो है वो भी कुछ गड़बड़ कर गया था आज। एनीवे माज़ूर चाहता हूँ आपसे राजराम जी, और कोशिश है आपसे 3 बजे के बाद इंशाल्लाह टेलीफोन ठीक है और ज़रूर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अब 3 बजे तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई खबरें आ रही हैं और उम्मीद करता हूँ कि खबरें के बाद जो है टेलीफोन कोई ना कोई आपको मिल जाएगा करने को। वैसे समीन आप सुन रहे हैं इस वक्त 99.8 FM पर साउथहैम्पटन में। साउथहैम्पटन हमारी दूसरी फ्रीक्वेंसी है DAB रेडियो की, उसमें ट्यून करें ज़रूर, कारों में कहीं घरों में भी जहाँ DAB रेडियो है आपके पास वहाँ सुन सकते हैं, और पूरी दुनिया में कहीं कहीं सुनते हैं www.awazfm.co.uk पर अगर काम करता है तो, वरना कोई और प्लेटफॉर्म आपको ढूंढना पड़ेगा। स्टूडियो का फ़ोन मुआज़र के साथ फिर कहता हूँ कि ये काम नहीं कर रहा, बहुत जल्दी जी हमारे मैनेजर साहब, ही इज़ वर्किंग ऑन इट ऑफ कोर्स लाइक ऑलवेज, एंड बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज़ मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और उम्मीद पर दुनिया ज़िंदा है जी, इसलिए कुछ ना कुछ होता रहता है, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब आपका मेरे साथ कोई कनेक्ट नहीं होता तो हम आपस में बात नहीं कर पाते, फिर कुछ मज़ा नहीं आता, पता नहीं चलता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। फिर जो 4 आदमी जो सुन रहे हैं वो भी अगर मायूस हो जाएं तो फिर अभी हमें धमकी ना दिया करेंगे, हम आएंगे नहीं, फिर हमारा क्या होगा, फिर आपके बगैर तो फिर कोई गुजारा नहीं हुआ। अगर मायूस हो जाएं तो फिर अभी हमें धमकी ना दिया करेंगे, हम आएंगे नहीं, फिर हमारा क्या होगा, फिर आपके

0: तो बचना जालों से कहो मत वालों से तो बचना जालों से अभी तो कितनी दूर है दिल्ली हम दिल वालों से
1: अभी तो कितनी दूर है दिल्ली हम दिल वालों से
0: इधर आओ न दिल

मुझको इस रात की तनख्वाही में आवाज़ ना दो जी, फिल्म थी हम भी तेरे और दिल भी तेरा, ऐसी बात थी जी। थैंक यू वेरी मच जी आपका। राज राम जी बता दूं जी, आ गए अशोक पटेल साहब जनाब, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, मैंने मैसेज नहीं देखा जी, माजर चाहूँगा। लीजिए आपको फिर आप ही की पसंद सुनवाते हैं जनाब। राज राम जी वैसे गाना तो लाइन अप किया हुआ था जनाब अमीन कुरैशी साहब, मैं पूरी उम्मीद है कि वो आपके लिए ज़रूर थोड़ा सा सब्र कर लेंगे और आपको गाना सुनवाते हैं जी। पहले आप काफ़ी देर आपको इंतज़ार करवाई जी, आपको वाली सुनना चाहते हैं जी। एक वाली आप सुन चुके हैं, दूसरी वाली आप आ रही है जी। आपका ये जो फिल्म है जी, ये है ये नकली नवाब है जी। नकली नवाब से सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले। आप तो आप कहते हैं जी, हम दीवाने तेरे दर से नहीं टलने वाले। अच्छा जी।

जी अशोक साहब, हम दीवाने तेरे दर से नहीं टलने वाले, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ उनके साथ कोरस्ता। आपने सुना जी फिल्म नकली नवाब। मैं आता हूँ जनाब अमीन कुरैशी साहब आपकी तरफ। आप कहते हैं जी हम प्यार का सौदा करते हैं एक बार। अच्छा जी, ऐसी बात है। लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म जिंदगी

जिंदगी और कुछ भी नहीं जी, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा सुन रहे थे जी। आप थोड़ा सा सैड वर्जन था, मुकेश शशक और लता मंगेशकर की आवाज़ थी जी, फिल्म का नाम था शोर। आइए एक और गाना आपको सुनाते हैं, अशोक कुमार जी, आप अशोक पटेल जी रादर, आप की फरमाइशें काफ़ी होती है जी, इंशाल्लाह आपको सुनने का भी मौका मिलेगा। सुल्तान हिंद से आप सुनना चाहते हैं, कहते हैं जी अब जिंदगी का कोई सहारा नहीं,

तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, सब कुछ भूल जाना आसान है, सब कुछ भूल

जी जी उठाता हूँ बहुत जल्दी आपके फ़ोन उठाता हूँ जी, ज़रा मुझे गाना अगला लगाने दीजिए। और अगला गाना कुछ आ रहा है जी, आपकी खिदमत में भेज रहा हूँ, फिर आप ही की फरमाइश है। और ऐसा होता है कभी कभी, कहते हैं चल आगे आगे निकल, आगे क्या निकलना जी, अब टाइम हो गया मेरे घर जाने का। फ़िलहाल आपको ये फिल्म चक्रव्यूह से गाना सुनाता हूँ मोहम्मद रफ़ी का, आगे आगे निकल जी, पीछे भागे तेरा साया। वैसे ऐसा ही होता है।

चल चल आगे निकल जी, पीछे पीछे भागे तेरा साया, बच के निकल जी। बच के निकलना पड़ेगा स्टूडियो से जी, कोई ऐसी बात नहीं जी, साया इंसान का साथ ही रहेगा, ये कुदरत का निज़ाम कुछ ऐसा है। बहुत बहुत और बहुत शुक्रिया जी आप सामीन का जिन्होंने मेरा साथ दिया, टेलीफोन ना काम करने के बावजूद आपने जी मेरा कैम किया, और कभी कभी ऐसे होता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मदद हुआ हूँ जी जिन जिन साथियों का, अगर मेरी वजह से कोई दुख दुखा और जो पहुँच ना सके जी स्टूडियो में, कोई बात नहीं, जब भी कभी हमारे टेलीफोन ठीक हुए तो ताज़े होंगे, नए होंगे और ठीक ही होंगे जी, घबराइएगा नहीं। अभी देखें हमारे मैनेजर साहब, ही इज़ रियली वर्किंग ऑन इट। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जाने के बाद आ रहे हैं शुएब साहब अपना ड्राइव टाइम लेकर 4 से 6 बजे तक, 6 बजे उर्दू में खबरें होंगी, और फिर हमारे मैनेजर साहब आएंगे ना जी दम दम मस्त कलंदर लेकर। ज़रूर कुवारियों को प्रोग्राम ज़रा उनसे भी बात कीजिएगा, पर कैसे करेंगे, टेलीफोन तो करता नहीं। हाँ, स्टूडियो का जो है ना वो वॉइस मशीन का कहते हैं वो चलती है, या वो 0778469 वाला व्हाट्सअप जो है 440 वो चल रहा है। इसी के साथ आपसे चाहूँगा जी इजाज़त जी, यार जिंदा सोबत बाकी अखन साई नाव सानिगाफ, बट बिफोर आई गो आई एम गोइंग टू लीव यू रूना लैला। अल्लाह हाफिज़।

0: This is Southampton's Awaz FM News.
1: उर्दू न्यूज के साथ मैं हूँ मुकर्रम अब्बास। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। रशिया के सदर ने कहा है कि यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए अमन मौहदे का इम्कान मौजूद है। नेदरलैंड्स ने खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र 86 टन गोल्ड अमेरिका और कनाडा से बरतानिया मुंतकिल कर दिया। केन्या के प्रेसिडेंट ने भारत की केमिकल कंपनी को मुल्क में काम करने से रोक दिया। सऊदी अरब के इमिग्रेशन हुकाम ने पाकिस्तानियों के लिए अहम हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान सरहद से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 15 टेररिस्ट को हलाक कर दिया। और मिस्र के साउथ इलाके में बस हादसा, 16 अफराद हलाक, 29 जख्मी। और अब इन खबरों की तफसील। मिस्र के साउथ इलाके में बस हादसा पेश आया जिसमें 16 अफराद हलाक जबकि 29 जख्मी हो गए। हेल्थ केयर अथॉरिटी की जानब से जारी बयान में वाक़े के मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार भी किया गया। कीनिया के प्रेसिडेंट विलियम रूटो ने भारत की केमिकल कंपनी को मुल्क में काम करने से रोक दिया है। उनका कहना था कि केमिकल कंपनी मकामी सनतों में सरमाकारी और मकामी मादनी वसायल से कीनिया के शहरियों को मुस्तफीद करने में नाकाम रही है। प्रेसिडेंट ने भारतीय कंपनी की जगह दो नई कंपनियों को मौका देने का भी ऐलान किया है। नेदरलैंड के मरकजी बैंक ने ऐलान किया है कि उसने बढ़ती हुई ज्योग्राफी और सियासी कशीदगी के पेश नज़र अपने सोने के ज़खायर में से 86 टन सोना अमेरिका और कनाडा से निकालकर बरतानिया मुंतकिल कर दिया है। डच बैंक का कहना है कि न्यूयॉर्क और ओटावा की नस्बत लंदन में रखे गए सोने के ज़खायर की तजारत ज़्यादा आसानी से की जा सकती है। दूसरी जनब लंदन में रखे गए सोने का हिस्सा 18.1% से बढ़कर 32.1% हो गया है। बैंक का 30.8% सोना अब भी नेदरलैंड में मौजूद है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए अमन मौहदे का इम्कान मौजूद है। यूक्रेनी हमलों के बायस मुज़ाकरात दोबारा शुरू करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट के बयान से दोतरफा अमन मुज़ाकरात के इम्कान मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद के करीब दहशतगर्दों की मुल्क में दाखिले की कोशिश नाकाम बनाते हुए भारतीय सरपरस्त याफ्ता 15 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। फितनतुल खवारत के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई 36 घंटे जारी रही। हलाक होने वाले खवारत से बड़ी मकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान ने सऊदी अरब में मुकीम और वहां जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी शहरियों के लिए अहम और ज़रूरी हिदायत जारी कर दी हैं जिसमें उन्हें मुख्तलिफ कानूनी खिलाफ वर्जियों से बचने और सऊदी कानून की पाबंदी करने का मशवरा दिया गया है। पाकिस्तानियों को अकामा या वीज़े की मुदत ख़त्म होने के बाद सऊदी अरब में क़याम से भी गुरेज करने का कहा गया है। हिदायत में अवामी मुजाहरों, हड़तालों या गैर मजाज इज्तमात में शिरकत से गुरेज, हसास सरकारी सिक्योरिटी तनसीबात की तस्वीर न बनाने और अवामी मकामात पर सियासी मामलात या हसास मौजूआत पर गैर ज़रूरी बहस से इज्तनाब करने का भी कहा गया है। सऊदी अरब में मनशियात से दूर रहने की भी हिदायत की गई है। मिस्र के साउथ इलाके में बस हादसा पेश आया जिसमें 16 अफराद हलाक जबकि 29 जख्मी हो गए। हेल्थ केयर अथॉरिटी की जानब से जारी बयान में वाक़े के मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार भी किया गया। सामीन, ये थी इस वक्त की अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए

उस्ताद नुसरत अली खान साहब की आवाज से ये प्यारी सी कव्वाली आपने सुनी, आफरीन आफरीन। आप सुन रहे हैं आवाज ऑफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। मैं हूं आपका होस्ट अली, और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम महफिल कव्वाल, यानी कि कव्वाली प्रोग्राम मेरे साथ यानी कि अली के साथ, और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर 02381980072, 02381980072। व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 07784691440, और साउथैम्पटन से बाहर हो या फिर आप यूके से बाहर हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 07784691440, जस्ट ऐड +44 एट द बिगिनिंग। और अपने जितने भी लिसनर्स आयरलैंड में हैं, और जितने भी हमारे लिसनर्स पोर्टस्मिथ और उसके इर्द गिर्द नवाद में हैं, और हमारे जितने भी लिसनर्स बर्मिंघम और उसके इर्द गिर्द नवाद में हैं, आप सबको भी सलाम अर्ज करता हूँ, खुश आमदीद, वेलकम टू द शो आवाज़ ऑफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk। आइए चलते हैं अब अगली कव्वाली की तरफ, और चलते हैं बदर मियां दार खान साहब की आवाज। इनकी आवाज से आपके लिए पेश करता हूं ये अगली कव्वाली, बंजा मलंग गौसदा। एंजॉय कीजिए ये प्यार सी कव्वाली, और मिलते हैं इस कव्वाली के उस पार।

0: बदर मियादात खान साहब की आवाज से यह कवाली आपने सुनी, बंजाब मलंग गोस्ता। अब सुन रहे हैं आवाज ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। मैं हूं आपका होस्ट अली, और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम महफिल कवाली, यानी के कवाली प्रोग्राम 99.8 एफएम। दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। आवाज ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। स्टूडियो से कांटेक्ट करने के लिए, रब्ता करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 02381980072, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914040। आवाज ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम। आई चलते हैं एक बार फिर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज, दाता पिया लीला करम आज कर दे। एंजॉय कीजिए ये अगली कवाली, और मिलते हैं इस कवाली के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम। समीन, आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट बता देता हूँ। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपके लिए पेश करता हूँ कुछ ट्रेडिशनल कवालीज, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपके लिए पेश करता हूँ कुछ फिल्मी कवालीस। और अगर आपके कुछ मनपसंद ट्रेडिशनल कवालीस हो या फिल्मी कवालीस हो, तो मुझे कॉल कीजिए 02381980072। एंजॉय कीजिए ये अगली कवाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़, दाता पिया लीला करम आज कर दे।
1: तेरे ही नाम का सदका है शोहरत मेरी, तेरे ही नाम का सदका है ये शोहरत मेरी, तेरा ही नाम है नुसरत

बहुत ऐसे हैं कि जो दौलत पे फखर करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो शोहरत पे फखर करते हैं। अपना तो फखर है दाता की गुलामी नुसरत, हम तो

उस्ताद नुसरत अली खान साहब की आवाज से ये कवाली आपने सुनी, दाता पिया लिल्ला करम आज कर दे। उम्मीद करता हूँ कि ये कवाली आपको पसंद आई होगी। अब सुन रहे हैं आवाज ऑफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली, और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम महफिल कवाल।

Studio call phone number 0238198072. That's 0238198072. और इसके अलावा WhatsApp के जरिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 0778469140. खुश आमदीद हम करते हैं सरफरान रुखतार जो कि हमें इंस्टाग्राम के जरिए देख रहा है सुन रहा है समीना मुश्ताक जो कि हमें कनाडा से देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर और आप सब लोगों को भी खुश आमदीद

अगली कॉली की तरफ चलते हैं और इस वक्त आपके लिए लाया हूँ राहत फतेह अली खान साहब की आवाज। नैना मिलाइके एंजॉय कीजिए और मिलते हैं इस कव्वाली के उस पर।

राहत फतेह अली खान साहब की आवाज से ये कवाली आपने सुनी नैना मिलाई के। उम्मीद करता हूँ कि ये कवाली आपको पसंद आई होगी। अब सुन रहे हैं आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम महफिले कवाल यानी के कवाली प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम आपके लिए पेश करता हूँ एवरी ट्यूजडे 6 से 8 बजे तक। स्टूडियो से रब्ता करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 02381980072। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए हमें मैसेज कर सकते हैं 07786914400। तो हमें रिक्वेस्ट आया है फरजाना जी जो कि एशवर्ड कैंट से रहते हैं, और आपने रिक्वेस्ट किया है ये अगली कवाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ मैं ख्याल हूँ किसी और का। एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8।

उस्ताद नुसरत अली खान साहब की आवाज़ से ये गज़ल आपने सुनी, मैं ख्याल हूँ किसी और का। उम्मीद करता हूँ कि ये गज़ल आपको पसंद आई होगी। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम महफिल कव्वाली यानी कि कव्वाली प्रोग्राम मेरे साथ यानी कि अली के साथ। स्टूडियो का फ़ोन नंबर हमेशा की तरह 0238198072 आपके डेडिकेशन आपके रिक्वेस्ट के लिए, और स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर 0778469140। एक बार फिर आपको याद दिलाता हूँ कि हमारा इस प्रोग्राम का फॉर्मेट, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपके लिए पेश करता हूँ कुछ ट्रेडिशनल कव्वालीस, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपके लिए पेश करता हूँ कुछ फिल्मी कव्वालीस। तो अगर आपके कुछ मनपसंद फिल्मी कव्वाली या ट्रेडिशनल कव्वाली हो तो आप मुझे कॉल कीजिए 0238198072, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 0778469140। चलते हैं अगली कव्वाली की तरफ, और इस वक्त आपके लिए लाया हूँ अजीज़ मियाँ साहब की आवाज़ से ये अगली कव्वाली, तेरी सूरत निगाहों में। एंजॉय कीजिए और मिलते हैं इस कव्वाली के उस पार।

जुल्फ है और हाथ मेरा, सांप से खेलता है सपेरा, रुख पे जुल्फों का साया घनेरा।

है। नियत तुझ में जो बात है वो बात नहीं आई है, तुझ में जो बात है वो बात नहीं आई है।

0: मियां आपसे एक बात कहनी है, आपसे एक बात कहनी है।
1: छोड़िए, खैर कोई बात नहीं।

0: दिलकश मंजर होता है, क्या दिलकश रातें होती हैं जब उनका तसव्वुर होता है और चांद से बातें होती हैं। हम होते हैं वो होते हैं और चांदनी रातें होती हैं। एक चांद को तकते रहते हैं, एक चांद से बातें होती हैं तेरी सूरत।
1: हसीस मियां की आवाज से आपने ये कवाली सुनी, तेरी सूरत निगाहों में। उम्मीद करता हूँ कि ये कवाली आपको पसंद आई होगी। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली, और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम है महफिल कवाल, यानी कि कवाली प्रोग्राम मेरे साथ यानी कि अली के साथ। चलते हैं अगली कवाली की तरफ, और इस वक्त आपके लिए तब सुन रहे हैं प्रोग्राम है महफिल कवाल यानी कि कवाली प्रोग्राम मेरे साथ यानी कि अली के साथ। चलते हैं अगली कवाली की तरफ।

जी हाँ, आपने सुना है ये कव्वाली रिजवान मुआज़िम कोयल की आवाज़ से। उम्मीद करता हूँ कि ये कव्वाली आपको पसंद आई होगी। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली, और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम महफिल कव्वाली, यानी कि कव्वाली प्रोग्राम मेरे साथ, यानी कि अली के साथ। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो कव्वालीज आपको सुनाई आपको पसंद आई होंगी। और इसी तरह अगर आपके कुछ मनपसंद कव्वाली हो तो आप मुझे कॉल कर सकते 0238198072, 0238198072, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज कर सकते हैं 0778469140। आइए चलते हैं अब अगली कव्वाली, और ये एक्चुअली नात है कव्वाली के जरिए। नात कव्वाल आपके लिए पेश करता हूँ अली जफर की आवाज से, बलागल उला बिल कमाल ही। आइए सुनते हैं ये नात कव्वाल, और फिर उसके बाद हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के उस पार आपके लिए पेश करता हूँ कुछ फिल्मी कव्वाली। एंजॉय कीजिए ये प्यार सी नात कव्वाल, और फिर मिलते हैं इस नात कव्वाल के उस पार।

वेलकम बैक टू आवाज बैंक में रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूं आपका होस्ट अली और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम महफिल कवाली यानी कि कवाली प्रोग्राम मेरे साथ यानी कि अली के साथ, और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। स्टूडियो का नंबर हमेशा की तरह आपको याद दिलाता हूं, 02381980072, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914040। आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। प्रोग्राम का रुख थोड़ा सा बदलते हैं और चलते हैं कुछ फिल्मी कवालीज की तरफ, और आज के आपके लिए पेश करता हूँ फिल्मी कवाली। सबसे पहले आपके लिए पेश करता हूँ ये कवाली, मूवी का नाम है फिजा, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये कवाली पिया हाजी अली। एंजॉय कीजिए और मिलते हैं इस कवाली के उस पर।

कदर कोलाम और ए आर रहमान की आवाज से आपने सुनी ये कवाली। मूवी का नाम था फिजा और कवाली थी पिया हाजी अली। उम्मीद करता हूँ कि ये कवाली आपको पसंद आई होगी। आप सुन रहे हैं आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूं आपका होस्ट अली और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम में महफिल कवाल, यानी कि कवाली प्रोग्राम। और इस वक्त हमने प्रोग्राम का रुख थोड़ा सा बदल दिया है और आपके लिए पेश करता हूँ कुछ फिल्मी कवालीज। अगर आपके मनपसंद कुछ फिल्मी कवालीज हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0238198072। और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 0778469140। चलते हैं अब अगली फिल्मी कवाली की तरफ। और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ ये अगली क्वाली दमादम मस्कलंदर। एंजॉय कीजिए ये फिल्मी क्वाली और मिलते हैं इस क्वाली के उस पार।

दमादम मस्त कलंदर, आपने ये कवाली सुनी। उम्मीद करता हूँ कि ये कवाली आपको पसंद आई होगी। आप सुन रहे हैं आवाज ऑफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं आवाज ऑफ एम .co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली, और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। और उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो कवालीज आपने सुनी आपको पसंद आई होंगी। आइए चलते हैं अगली फिल्मी कवाली की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ ये अगली फिल्मी कवाली, आए तेरे दर पर दीवाने। एंजॉय कीजिए और मिलते हैं इस कवाली के उस पर।

से और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज से ये कवाली आपने सुनी, आया तेरे दर पर, मूवी का नाम था वीर ज़ारा। अब सुन रहे हैं आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूं आपका होस्ट अली और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम महफिल कवाली यानी कि कवाली प्रोग्राम मेरे साथ यानी कि अली के साथ। और स्टूडियो का व्हाट्सएप का नंबर 07846914040, 07846914040। और इसके अलावा व्हाट्सएप के स्टूडियो का फोन नंबर जो है एक बार आपको बता देता हूँ, 0238198070। आइए चलते हैं अब अगली कवाली की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ एक जानी पहचानी कवाली, मूवी का नाम है कुली, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ मोहम्मद रफी साहब की आवाज से ये प्यारी सी कवाली, मुबारक हो तुमको हज का महीना। एंजॉय कीजिए और मिलते हैं इस कवाली के उस पार।

समी प्रोग्राम का वक्त पूरा होता जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अली को दीजिए इजाजत। Until next time, take care, bye-bye, look after yourself and stay safe. जाते जाते आपके लिए पेश करता हूँ ये आखिरी कवाली निगाह नाज के। इसी के साथ अली को दीजिए इजाजत, एंजॉय कीजिए। Until next time, take care, bye-bye.

0: Ali, Malcolm here in Portsmouth. Many thanks for your two phone calls. I am now tuned into AWAS, and it's showing clearly on my digital sign on my radio. Lovely to hear you back again. See you soon. Bye.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: आपकी आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर, आवाज एफएम 99.8

0: animals can't speak to drivers. But if they could, they would be asking us, telling us by the sounds of it, to put our litter and fruit waste in the bin. Because roadside litter kills an estimated 3 million animals every year. No wonder they sound miffed. So let's lend them a paw. Let's take our rubbish with us and bin it properly. National Highways. And what's that? They said thanks very much.
1: Exciting!
2: Remembering how to prepare for a road trip is as easy as spelling it. T is for top up, like fuel, oil and screen wash. R is for rest, taking a break every 2 hours. I is for inspect, like your tyre pressure and tread. P is for prepare, being prepared for any weather. T-R-I-P. Remember that, and you're ready for a safe trip.
0: Are we ready?
2: Yes, Mum.
0: National Highways.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
4: जी ये अब्बास हसन बोल रहे हैं आप आवाज एफएम सुनते रहिए

0: From Wolston to West End, from Millbrook to Marchwood, this is Ours FM.
1: Exciting.
2: Remembering how to prepare for a road trip is as easy as spelling it. T is for top up, like fuel, oil and screen wash. R is for rest, taking a break every 2 hours. I is for inspect, like your tyre pressure and tread. P is for prepare, being prepared for any weather. T-R-I-P. Remember that, and you're ready for a safe trip.
3: Are we ready?
2: Yes, Mum.
4: National Highways.
5: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
6: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
7: This is Shweta Subramanian, and keep listening to Awaz FM. You guys are awesome.

0: हमें तो लूट लिया रेडियो आवाज वालों ने, हमें तो लूट लिया रेडियो आवाज वालों ने। वाह वाह, यही बोलना था मेरे
1: Animals can't speak to drivers. But if they could, they would be asking us, telling us by the sounds of it, to put our litter and fruit waste in the bin. Because roadside litter kills an estimated 3 million animals every year. No wonder they sound miffed. So let's lend them a paw. Let's take our rubbish with us and bin it properly. National Highways. And what's that? They said thanks very much.
2: Exciting!
3: Remembering how to prepare for a road trip is as easy as spelling it. T is for top up, like fuel, oil, and screen wash. R is for rest, taking a break every 2 hours. I is for inspect, like your tyre pressure and tread. P is for prepare, being prepared for any weather. T R I P. Remember that, and you're ready for a safe trip.
4: Are we ready?
3: Yes, Mum.
1: National Highways.
5: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज एफएम के साथ

0: तजुर्बे में मैं तुमसे बड़ा हूँ साना, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मी मुंबई कर, मुंबई पुलिस, जय हिंदुस्तान, जय महाराष्ट्र।
1: Hello, I'm Sapya Kaul. You are listening to Avaaz FM.
2: Exciting! Remembering how to prepare for a road trip is as easy as spelling it. T is for top up, like fuel, oil and screen wash. R is for rest, taking a break every 2 hours. I is for inspect, like your tyre pressure and tread. P is for prepare, being prepared for any weather. T-R-I-P. Remember that and you're ready for a safe trip.
3: Are we ready?
2: Yes, Mom.
3: National Highways.
4: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज, आवाज एफएम के साथ।
5: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
6: So, we need a new jingle, Ali. We've got to get in that studio and produce a new jingle.

0: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुँचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ।
1: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
2: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
3: Your voice in your community. This is 99.8 Awaz FM.